0: कडिम फतेह फस कडी 30 मिनट में दिवेहराज जयगाडो
1: अलगुण मेंगे प्रोग्राम द हम जिफा वागतुं देन गनस्तेनी कीरत कुरान के दिवे तर्जमा कीरत कुरान के दिवे तर्जमा में गनस्तेनी सूरत इब्राहिम अशारवन आयतुं फशागिन ए सूरत के फंसास देवन आयतु गनियला आदे सूरत गनियला तर्जमा विदाल देवा फावणी डॉक्टर मोहम्मद हनीफ
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله دے اسم فلم فشاگن میں

0: बाद में हर गाड़ी हर गाड़ी फनर मेट में दिव्य राज्य गड़ौल में अपने बाज रहे हिंदू ने में तो प्रोग्राम गाड़ में बाह दक्कत में मिलें दमाव लो कि सीना आते गोत गा दंडोर कंतर अग्गी को दंडोर कमल दिवे नफा इत्रो कुरुमा कुरुव दान कंतर तह की को बाह जे
1: ओवन लफाहु के खबर तो होगे अदाहम कुरुन तक बदाल आए रोगा बंगरा नेटवर्क होगे इस दिवे ही मिया हजर कॉफी कमा बुना खबर उफाह खोल लेवे दें मी के इतरों आगमन नफाह करवे खबर तो होगे तेरेगा काफ गुरादो गहिंगे मारा मारी एक कामी है कुछ हम वज एक हम बुना खबर विस्फाह कर ले
0: अदान मेरा करे भी अदें अनुगत कुल्दी खबर के क्या दरनवाला का खबर है न दें न मैं महिम गया खबर तो होगे सुरहित हमरी एक उतने में फाह कर ले नस्तर दें एक इतरों और मी इराद करे भी हाथे जहर एम में फाह होगे महिम खबर तक का खबर तो होगे तफसील ते बेफना हमें दिव राजा डोंगे नस्ते ते फंग और में प्रवाह निमाद में कुरिन इराद करे भी आदि नुस्ते होगे महिम सुरहित का स्थिति बेफना बेअला दरनवाल देन एन तो
1: और मैं हम अति बेफना को मैं दो कुस्तान नवाबा के मी hikumettari bastakon insana ge sluka akhlag heomaka battankon ehmi hunnaak ulene rangal goittan algon menna dasfegente
0: da
2: hikumettari ge bas

0: ミワーカです。ミワーカです。
1: Anargari ngegargari ashavis menitin gafmeni migari ga kure migendani mi vahkes mi show mi re argument kure migendani studio en vagutun tibe funa hama gulala vahk dakkalan show mi re kure daani de mi re show galgu mi dakkani mi show ga videsi masike terin kina vahk mi vahk mi dakkani mi vahke kie sama dakkan jihye vahke demme sama befruk faha kure vihen masike tan eba huri rajje ghe kamaku mi hama videsi ingina tangam fa kore den e sababak fa rika vedan tang kole ofi hu ga me amille kore nje ma sike ta me sa ga me amilla ve fa ri tang huri ka mes vedan no le tang kole unda go ma sike ta kore ven kore unda guli ka mes vedan kala eta sab ta ke hunna ta do e sabab ta den algo ve me bala lan me are be baveri ka kul fa salam alaikum
2: wa alaikum salam
1: o mari ta al kine to
2: Alhamdulillah, koba baat matu ini.
1: Nangalu nangalu, koba.
2: Alhamdulillah.
1: Ikol la ni mire.
2: Mire dengan ma korona ma doha yang oti.
1: Oti, kamen ni mire, mire ni conference bes.
2: Mire no ne conference mana ne.
1: Aba tu sekolifa, eh?
2: Ah
1: de. Eti mu baik kenuar, doh kamen kamen nukuris kamen.
2: Insyaallah.
1: Mere mi dakkani bidesi masikketeri gena wa wah karajje ga ko baato sababaki
2: ti dakkan jehe wah ka deke wen jehe wah ka ekama ko dekkuna ka sikam ko hallen ne wah ka e hallen san wana ta mihar den taketi ge agu bodu kamu divahin na den je paasa ko mihar bidesin na purukudu paasa ko dini ma a अकन ओब कुरे अदि किता में दो दिया को पूरी नामा वे एकम तो दिवहिन न का एगो तक काम को नुदे दिवहिन न का नुकुरे वे ने है कुड़कुड़ पैसा कोला कुन्ने अ मिराज जे पैसा कोला कुन्ने है कुड़कुड़ पैसा कोला कुन्ने दिवहिन न का नुकुदे ने एहे मुम के सबब क्रिया फोरम तेरी मी हुम में समा कालोड पहार गए महददानी वे अदि जे तेरे कुनी के हुम का अदि हेन का में कुरम का कारगराज तक हुआ है आखिरी बार ना मैं मिहंगोल से माहौरिया कब कब विदेशी नहीं ले चाहे मैं तीन बारे एक मैं कोई मिहं कुरा मस्त क्या बाई मिहं कुरा मस्त क्या रंगलो अने बाई मिहं कुरा मस्त क्या दो दिया दे दिवसीम बसवानी है ना ऐसे नमः वे मिहं देवर हम ओबे वहाँ का देखे वे मिहं करते तो हुन्ना एमीहु एक किया मुसारा है का पूरे वे का कोट जब देखो जो है का ऐसे मुझको विदेश इल्ला ऐसे कोई दिनी में ऐसा तो वो पूरे ऐसा ना मी जिना मीहु ये बाला नहीं ये वाका में थी दें पुराने का मिलने की पुराने
1: दें विदेशी masih keteringge sabu misal ke mi raja gitmai ferama khas ko mi salamat araka terkam nune ekal kangka masir kurane ba.
2: Siapa
1: tu? Argumenge mi gitmai ferama asir ko fane hiye ekal. Ma
2: bodoh betul sir kurane. Asar kurang kurakan leng asar om kure kurabun daniye.
1: Eh mi mami masih keteringge madu kure weni kene hada.
2: मादु कुरे में नहीं मिहार दिवहिन नम्बे उदयवर का आ मिहार ताके ठीक है आगु काम कोले इल्कोप आ दिवहिन नम्बे बोलो मैं एकाशी जब मावर के मुसारे लिबिगे दिवहिन नम्बे से क्या कोट दे आ देहे मिहार का मसे क्या कोट दे
1: ये दिवहिन कुरंचे खारा तो बॉडी तो
2: हारा तो बोली है कि ना उम्मी आगुता उन्ना गोतुंग एलिबे ऐसे को हमन हुए हैं ऐ मस्त लगी जब हारा तो बस बोली जब मिहार दे
1: माने जमाना अन्न बदल देता है
2: अन्न बदल गई जब मी जमानों के दे माने ऐसे कि अलगन में कुरी जमान ने नूम ही है कि मिहार को दे कारण था नूले जे नूले में ने एमबेस नूरे ने
1: बोमबेस जे निक गाने के
2: आ जे जे जे है नूले जे कक्का जे नूले वेले वो में जे नहीं गन्ना मी कुछ मी हम हुरी हाँ कम कम बस अरे तो बोलवा रहे
1: हैं ऐसा देता हुरी हाँ चकिस में यार
2: आ ಬಾಜ್ಯ
1: ರೇಖೆ ಇದೆ.

0: नाज नाज
1: ठीक है दोम्बे
0: आधे बाला मिता दोम्बे का तो गई शिंदे बाला
1: आज ता अनेका कहने भी कौन का मैं बैनूं भी
0: कामे बैनूं मैं कहनूं नहीं आ दोम्बे नाज करनूं गोवा ता
1: आम को हिंदो वाणी मिहिं बुन्दस तें बाय फार गोवा दें बुने बाला की कुरंत अस्तुति गोवी
0: मिहारु दें ऐसे वेल निमुने मा अब तो के एकता इन्ना नी
1: किहिने हाता नी किता तनंग एप्लाई कोग्गे मिओले नी आदि हम आलाय नुगने
0: दोंबे में दक्का नी जॉब के वाह के नोने ब्रेकफास्ट का लंच का कोसला एक्वेरी ना एक मजाक कोल्लो में विसने ती है
1: मिहारु दें कोरिंग उले हैं हुस मजाक करा कर नुआने नो
0: अस्ता दोंबे के नाज हमार अंकला विस बोडुई था ते दोए पता दोंबे वज्जे रंगला बाधा था इस कोलों में स्मिहार वारत दिखो वज्जे तो
1: दे दोंबे मिहार 19 प्लस से सो
0: एबु ना है देन को बात एहन रट्टे हैं एमी हूं कौन कमें गोले नी
1: एबा उले एमें बिस हम दाल आगे निच्चे का जहे तो बालनी
0: दा
1: मिबुनी जॉब
0: ओहो दाल आगे मासिफा वाह कभी आडवा हनी दाल आगे वजीफा होदा का मैं इंगुनी आला
1: देन दोंबे
0: ओके ओके नाज हिंगा फैमिली एंड फ्रेंड्स बाबा की वे रावा लो की ही ने भी
1: की हाँ फ्रेंड उन्ने की ही ने एम में
0: ओहो एम में ना नो बाय एम में हूँ एम में क्लोज
1: ओके हिंगा ती का मावले माँ
0: आ मादमारे यहाँ दमा
1: ओके आरं बालारनं फजुआ शाहा यंगादे वेतो
0: आदि उलेननो एक कुज्जे
1: रानिया ए नहीं नुवे अन्ना नहिने आहा लाना मले
0: देन अन्नम वाणेनु एयनु बेस्ट फ्रेंड हेन कोमे हमस के अन्नम वाणेंगे
1: देन बालारनी दो
2: मिफारु लाहिकेन्नु कामयाब खुराका आदिकिरिया मरे मेगुनी एगेगा बाबु के मेहेदि कीवेगें राहनिया देन रंगळुवाणी मिकमा एहेमियाकु नूळुं शी इज माइन ओनली माइन
3: दाइन दाइन अस्ता कीने वेफति होती देलो मरेगें हीला हीला अनिक्का हेलावगें कौन हुआ फिर ने बल्लनी
2: कौन ये रखवाई ए मार्ड कब्बल मियार मिगे ये तो रुगे थारु दंडी विस्ती पुणे था
3: ए दुआ का मी इंतजार करेनी
2: ए आस्तु पुणे बाद कीने वाणी
3: अले मी दाईने कन्यू लेगे ता आरे मी वाणी तित्ता नुकुम वगुतो तित्ता बुने ए बोते सोफा वेट्टी फकाने गंडो
2: नुबुनाने तित्ते नुबुनाने तीने
3: ऐमे बने माशे, दें बने बाला, काको के हियाल का गेल्लीफाव गिनती है नी।
2: इतने कामा हियाले, एकामो कोंगे था, वाला तो लोभी हियाले।
3: दें बने बाला, ऐरुने नो आहना विसेंगे नी।
2: दो एप्प की वारा फाड़े गए चिदो।
3: लोभी वेवुनी था।
2: लोभी वेवुनी मा, केन तास्तुवानी?
3: कामकार नो लाहोनुं अब तो इस हियाल का गैल्ली फहुरों लोबी वामी हाया गुलों होरी कौन में अच्छे काम दियों कौन में मिया को काम दियों
2: अरे कहना सर ऐसे तो भी वेबुनी
3: ये वाहक फिट्टा को गल्ली फहुर ना वाहक ता
2: आहान नहीं वनी हम आहान ना लोबी वेविज्जे
3: देंगे मे के कैरी का बुनाम बीनो लोबी वेविज्जे
2: बुनाना ए वागुता का
3: आरे मस मेरे ती वागुता का निंदित सारों का
2: ओ नस्रा लोभी वे उमा की आधा उफावरी का में केदो
3: आ असलुस ए ये वारा उफावरी का में मी हाँ एक को बदल करो आ का में मुली दुनिया बदल कर ला का में ವಶಯಾಗೆ ವಾ ಮಾಹೌಲು ಹೀವಣಿ ಹಿತುಗೆ ಹಿಂಗುಮ ಎವ್ವರ ನಶಾ ಹೆ
2: ಆತಿವ ನಶಾಲ ಲೇರಿ ಇಸ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ